इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हन कि ऐ जीव क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए कोई पता नहीं कदों मरना है किथे मरना है और मरण दा कारण की बनेगा इस गल दी खबर रावण वर्गे नहीं पा सके जिन्हां ने काल नू चार पाई नाल बनिया होया सी हरनाकश वर्गे जिन्हां ने वरदान लै रखे सन ना धरती ते मरा ना आकाश ते मरा ना दिने मरा ना राती मरा ना मनुख पासों मरा ना जानवर पासों मरा ना किसे मनुख पासों ही मर सका मैनू कोई मारन वाला ना रहे पर जदों अंत समा आया ता फिर सारिया नू जाना पैंदा है पता नहीं की कारण बनेगा हर एक दी मौत दा कारण है मौत आउंदी नहीं बुला लेंदी है जदों समा आउंदा ना उदों बुला लेंदी है इसलिए गुरु अमरदास पातशाह जी कहंदे हन ऐ गुरु के लाल मौत नू हर वेले चेते रख ते जे मौत नू चेते रखेगा एक तां तेरा दुनियादारी नाल माया अते तन दौलत पदार्थां दे नाल सने घटेगा क्योंकि पता है ये छड जाना है दूसरा फिर तैनू साहब चेते आवेगा ते जिन्हां नू साहब चेते आउंदा है उन्हां दा संसार ते आउणा भी सफल हो जांदा है संसार तो जाना भी सहला हो जांदा है सफल हो जांदा है आउणा ते जाना सफल करन लई हजूर कहंदे हन जेकर साहब मनो ना विसरे तां तेरा सहला मरना इसलिए क्या जाना किव मरेंगे कौन जानदा है कदों अखीरला श्वास है हर जपदियां खिन ढिल ना कीजे मेरी जिंदड़ी है मत के जापे सा आवे के ना आवे राम गुरु अमरदास पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं।

स्थल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगीधर पाछा काल दी गति अगाध कथन करते हैं। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहब ते ऊने साहब के विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज के ऊपर, उथे बैठ के काल का कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यो पानी पीन लगता है तां इसते मुख विच मच्छी फस जाती है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज, ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई। ते ज्यों इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहण वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखे कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते शै मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर जी कथन करते हैं कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। जो निशाना मारिया मिर्गनी नू तां मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होने वाला सी क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नू दस्या, शिकारी नू दस्या, ते शिकारी ने झट तलवार कढ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उसे वेले शरीर छड गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इना चौहां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया है, हुण मेरा जीवन त्रिग है, वो भी उथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ये शेर दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ये चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ये दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई। इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया,
ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਝੱਟ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ,

और फिर दसां पातशाह की जोत गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तक और फिर शहीद सिंघा सिंघणियां दा जिक्र नाम दी दात दी मांग चढ़दी कला दी मांग।

अनंत जन्म बीती अन फरमाई, अनंत जन्म बीती अन फरमाई, घर वास न देवे दुत्तर माई।

अकेडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दिया बीबिया दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो। बुलाओ फतेह ते अक

कान जे होवन सुनने वाले, कान जे होवन सुनने वाले, श्री गुरु नाम सुनी रे गैर सुटी रे, तो श्री गुरु नाम

एक अख दे पलक विच कुछ दा कुछ हो जाता है। मनुख केडियां पक्कियां बनी बैठा है, समान सौ बरस का पल की खबर नहीं। इसे लई धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी कह रही है, हर जपद्या खिन ढिल ना कीजे मेरी जिंदड़ी ए, मत के जापे शाह आवे के ना आवे राम। हर जपद्या ढिल ना कर, इसे लई महापुरख क्या करदे सी भाई, अमृत वेले जाग के इशनान करके पहला नितनेम कर लिया करो, पहला गुरु दा कम कर लै। पता नहीं आउन वाले श्वास जिना दी तू उड़ीक विच हैं, ओ आउनगे के ना आउनगे। इसलिए ए संसार ता ऐसा है, इथे दुनिया मतलब दी है, इथे झूठ दा पसार है। तू नेहो लाई बैठे तेनू आपे ही सोझी हो जावेगी के जिना लई तू की कुछ नहीं कीता, पर केड़ा भाई तेरा बनेगा, किसे ने तेरा नहीं बनना। इसलिए असी एक दम दे मालक हां जो हजूर बख्शिश कर दे हां।

ये पल दी खबर नहीं, अहंकार कर रहे हैं। इसे लिए हजूर कहते हैं, तन जोबन का गर्भ ना कीजे, कागद ज्यों गल जाएगा। पता नहीं अगला पल किहो जिहा आ रहा है। धन गुरु नानक पातशाह संसार नूं तारदे होए एक नगर दे बाहर जा बैठे, वेख्या के सारे लोग बड़े खुशियां मना रहे हैं, ते झट बाद वेख्या के रोना पिटना पै गया है। इत्थे मर्दानिया आ हुणे तां खुशियां मना रहे सन, ते हुण वैन पै रहे हन जाके पता करके आ। मर्दाना जदों गया पता करके आया तां आख्या, गरीब नवाज सच्चे पातशाह एक सेठ दे घर लड़का होया सी। बड़ी मुद्दत ते बाद औलाद होण दे कारण सारा नगर बड़ियां खुशियां मना रहा सी, पर अकाल पुरख वाहिगुरु दी नेत नाल ए लड़का शरीर छड गया, ते ओदे विंजोग विच हुण रो रहे हन। मर्दानिया ए संसार है ही दुख सुख दा एक नगर है, इत्थे पता नहीं लगदा। जिस तरह समुद्र विच बेड़ा जा रहा है, पता नहीं किथे तूफान आ जाना है, किथे शलां उठ पैनिया हन, किथे शांत हो जाना है। ए साडा जीवन भी ऐसा है, पर प्यारी साध संगत जो गुरु की बाणी सानू बख्शिश कर दी है,

जैसे सर्प दी आरजा है किसे कम नहीं, और बड़ी वड्डी आरजा होंदी है सप दी। अजगर सप्पा दी सैकड़े हजारा बरस आरजा होंदी है, आख्या साकत दी भी इसे तरह ही आरजा, जिस तरह ओ किसे कम नहीं आंदे, बिना नाम तो मनुख भी किसे कम

बिन सिमरन भय कूकर काम साकत बेसुआ पूत न नाम बिना सिमरन दे आख्या मनुख इस तरह है जिस तरह वेशिया दा पुत्र है ते अपने प्यो दा नाम नहीं जानदा उनू कोई पुछ लवे भाई तेरे पिता दा की नाम है ता की दसेगा आख्या बिना नाम तो मनुख भी ऐसा ही है।

महिंजे तरसदे कद पसी दीदा। ये आप जी ने बड़े प्यार के नाल श्रवण किया है। सिंह यूथ वाले सिंह पहुंचे ने साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी की बाणी दे नाल ते सारयां दा प्यार है, पर इन्हां दा कुछ ज्यादा ही है। इस वास्ते इन्हां ने हुक्म किया है कि तुसी जरूर ही साहिब गुरु कलगीधर पातशाह जी तराना अखीर ते समाप्ति जिहड़ी है वह साहिब गुरु गोबिंद सिंह की बाणी दे नाल ही करनी है। साडे मन में ख्याल जरूर सी कि सतगुरां पातशाह जी का जो तराने हैं जां गुलदस्ते आप जी ने अगे कई बार सरवण किया है तो सतसंगी तराने दे नाल समाप्ति करांगे। आओ एक प्रार्थना रचना होर है जो आड़ा चुताला दी है, आओ वो आप जी बड़े प्यार नाल सरवण करो। शब्द कबीर साहब जी का है, आप जी नूं बंदिश का आनंद जरूर आएगा। इस राग का नाम लच्छा प्रदीप की राग है जो बड़ा ही पुरातन बड़ा ही पुराना राग है। तो पुरातन बंदिश है, बड़े प्यार नाल सरवण करो।

ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस तत् आओ समा भी हूँ समाप्ति दे वल पहुँचते पहुँचते भी जे मन में ख्याल बनावांगे कि समाप्ति करनी है तो ही 35-40 मिनट फिर भी लग जाने हैं क्योंकि अजे आनंद साहब का पाठ या होर एक दो बंदिशा तराने रेंदे ने वो आप जी ने सरवण करा के आओ प्रोफेसर साहब का हुक्म है कि छनकार निराले तीरां दी वो जरूर सरवण करा तराना भी सरवण कराते आओ पहला छनकार निराले तीरां दी जो कि इस तरह की एक संगीतक बंदिश है संगीतक रचना है उदे विच भी अलमस्त होना ने एक ऐसी कलाकारी फिट कर दिती है ऐसी कला दे नाल उस नूं बंदिश नूं ऐसा जोड़िया है स्वर ते ताल दे नाल कि तबले दे विचों किस तरह किहड़े किहड़े बोलां दे नाल तीरां दी आवाज़ निकलती है किस तरह रणजीत नगारा वजदा है ते किस तरह घोड़े दे टापां दी आवाज़ है ये छोटी जी बंदिश है 5 मिनट दी आओ ये भी सरवण कर लो उस तों बाद फिर तराना आप जी फिर बड़े प्यार दे नाल

सिंह जी महाराज जी, गुरु जी बड़े मरदे मर्द खुदा थे, बड़े आवदो जाहदो पारसा थे, गनी थे नबी थे, बड़े मुकदा थे गाजी थे, दलावर थे वो खैरे शफा थे, करवाने की मर्ज की वो आले दवा थे, देखने के गुरु गोविंद सिंह थे लेकिन जाहरे खुदा थे। तन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जाहरे खुदा, ना सरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे विच सारे गुण सन। विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, नैण तो नशीले, सतगुरु पातशाह जी दे नैण तो नशीले मसतीले दो जादू परे, नैण तो नशीले मसतीले दो जादू परे, तनक निहार सब सुरत पलात है, तनक मात्र तनक निहार सब सुरत पलात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ, भक्ति और वीरता की गर्दन चुकात है, फतेह चाड़े आंगन और लक्ष्मी दबाए पग, गोबिंद मरगिंद गुर जीते नहीं जात है। धन गुरु गोबिंद साहब मरगिंद की तरह शेर की तरह, सतगुरु पातशाह जी कभी भी रण मैदान में हारे नहीं है, सतगुरु पातशाह हमेशा जित हुए। तो सतसंगत जी, औरंगजेब का ऐलान होया कि मेरे कन्ना विच इन्हां सिखां दी ढोलकी ते चिमटे की आवाज, ते ये जिहड़े सति श्री अकाल दे जकारे छड़दे ने, इन्हां नूं जरा चेतावनी कर दिओ, अपने सिपाहियां नूं कह दिता कि दस दिओ कि मेरे कन्ना विच ये ढोलकी चिमटे की आवाज ना पवे, मेरे कन्ना विच ये जिहड़े जकारे छड़दे ने सति श्री अकाल दे, इन्हां दी आवाज ना पवे। तो कुछ मसंदा ने आके सतगुरु पातशाह चरणा ते बेनती की, महाराज बड़ी डर वाली गल है, बड़ा एक अनोखा चैलेंज औरंगजेब का होया है, सतगुर आपां लड़ाई झगड़े विचों की लैना है, ते कृपा करो कि आपां एक भोरा पुट लईए, आप जी नूं असीं मशवरा दिंदे हां। सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे सतगुरु पातशाह जी, ध्यान देना, सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे, कहिंदे सतगुरु पातशाह जी गरीब नवाज जी ये कृपा करो कि आपां एक भोरा पुट लईए, उस भोरे विच बैठ के आपां आस्ता आस्ता हौली हौली पाठ करा करांगे, आस्ता आस्ता बाणी पढ़ लिया करांगे, ते हौली हौली ढोलकी बजाया करांगे, ते उत्थे जकारे छड़ लिया करांगे भोरे विच ही बैठ के, ते आपां की लैणा है लड़ाई झगड़े चो। ते सतगुरु पातशाह जी हस पे, कहिंदे ने तुसां ते इह मन विच ठान लई है, मन विच विचार कर लई है, पर सतगुरु पातशाह कहिंदे मेरे मन विच जो फुरना है वह भी जरा शरवण करो। सतगुरु पातशाह कहिंदे उन्हें यह ऐलान कर दिता है कि मेरे कन्ना विच ढोलकी दी आवाज ना पवे, नगारा मार दिओ। सतगुरु पातशाह कहिंदे नगारे ते चोट मारो, नगारे ते चोटा वजन, ते सिंह चढ़दी कला विच जकारे छड्डण। ते सतगुरु पातशाह कहिंदे तुसीं भोरे दी गल करदे हो, असीं कहिंदे हां खालसे दा जिहड़ा निशान है उच्ची पहाड़ी ते चुल्ले, दूरों दूरों पता लगे कि आनंदपुर साहब दा इह लोहगढ़ दा किला है, यह आनंदपुर साहब की पावन धरती है, गुरु कलगीधर पातशाह विराजमान हैं। तो सात संगत जी, सतगुरु पातशाह कहिंदे गुरसिखो, तो सतगुरु पातशाह कहिंदे आ बोल नगारे ते वजने चाहिए ने, यह जिहड़े बोल है धमाकेदार जोरदार वजनदार शक्तिशाली, यह जदों वजणगे नगारे ते देखो फिर उहदे कन्नां विच जदों गूंजा पैणगियां ते पता लगेगा। तो सत जी गुरु कलगीधर पातशाह जी इन्ने अणख, सतगुरु पातशाह जी इन्नी जुरत, इन्नी शक्तिशाली वीरता दे पुंज सतगुरु पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह जी तो उचारण कर रहे तराना सत्यान देना। दागड़ दी धर्म दिगतांग, दागड़ दी दिम दिरना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, बागड़ दी ब्रिकते बांग तागड़ दी तोम तोम करना, तदर दानी दानी तुम दानी तदर तुम धिरना। अखीर ते सतगुरु पातशाह कहिंदे धीम ते धरना, इहदे विच विचित्र वीणा ते सितार दे बोल हन धीम ते धरना। तो सतगुरु पातशाह कहिंदे तदर दानी दानी तुम दानी तदर तुम धिरना, हे अकाल पुरख तेरी कृपा है, तेरी कृपा ते तदर दानी दानी, हे दानी हे दान करन वाले, हे अकाल पुरख सब नूं देण वाले, सब नूं बख्शिश करन वाले कृपा कीती है, ये तुसां ने बख्शिश कीते बोल।

न आवई। जैसो मन लागै पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुर सेवा न लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन हो, साध संग कीर्तन में न ठहरावई।

सब लोग में संजोग पो चकवी बेयोग सोग पागहीन जानी है। जैसे दिन करके उदोत ज्योत जगमग उल्लू अंध कंध प्रचीन उन्मानिए सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है त्रिखावंत चात्रक रहत बकुबानिए तैसे

सोपाहीन पागहीन तपहीन बावरी दृष्ट दर्शहीन शब्द श्रुतहीन बुद्ध बलहीन सूदे हस्त न पावरी।